दमौली डायरी में मंदिरा छिड़ाई को नमस्कार। सुरुमा समाचार का प्रमुख शीर्षक। तनहुमा लोपनमुख नौ प्रजाति का गिद्ध को पुनरागमन। चुड़का नाच मार्फत मौलिक पहचान जोगाउँदै भुजेल समुदाय। विपदसँग जुध्न उद्धार टोलीको तयारी। र इरानको सर्वोच्च नेता खामेनीको अन्त्येष्टि आगामी जुलाई 4 देखि सुरु हुने।

0: ओली एफएम 94.2 समुदाय को आवाज।
1: ए बहिनी, घर त चिटिक्कै बनाएछौ हैन? यति राम्रो फर्निचर को सामान कहाँबाट ल्यायौ?
2: कहाँबाट ल्याउनु नि दाई, हाम्रै व्यासचर किसान हार्डवेयर को पछाडी पट्टी रहेको आरती कास्ट उद्योगबाट ल्याएकी नि।
1: हजुर, हामी कहाँ स्टील को दराज, कुर्सी, टेबल, साथै काठ को सोफा, दराज, पलाङ, पर्दा, कार्पेट, विवाह को सामान होलसेल तथा खुद्रा मूल्य में बिक्री गरिन्छ। आरती कास्ट उद्योग,
3: ब्यास 4 मेन रोड, दमौली तनहुँ।
1: प्रोप्राइटर विष्णु कुमार श्रेष्ठ। फोन 98 16 16 13 26, 98 4 63 056 05, 98 19 11 36 27, 65 65 0।

0: Willingo festivity offer. Our pound host 1 वर्ष को 200 Mbps international net TV साथ में dual band router, Nokia Beacon 1.1 mesh router और net TV set-top box. मात्र रु 1200 प्रति महीना में. शर्तहरु लागू हुने छन्. छिटो बने गई Willing.
1: दमोली FM 94.2 समुदाय को आवाज.
2: मेसना डिजिटल प्रस्तुत गर्दछ।

Whirling Go Festivity Offer. Our pound host, 1 वर्ष को 200 Mbps Internet TV, साथ में Dual Band Router, Nokia Beacon 1.1 Mesh Router और Net TV Set-Top Box. मात्र रूप 1200 प्रति महीना में. सर्थ हरू लागू होने चाहिए. छिटे बने गई Whirling.

0: डिलिभरी को पनि सुविधा छ। प्रोप्राइटर डिलीराम पाठक,
1: व्यस्तै बाग बजार जोशी पेट्रोल पम्प भन्दा ठीक अगाडि।
0: सम्पर्क नम्बर 9845043780।

0: WorldLingo festivity offer. अब पाउन होस्ट एक वर्ष को 200 Mbps इंटरनेट नेट टीवी साथ में डुअल बैंड राउटर नोकिया बीकन 1.1 मेश राउटर और नेट टीवी सेट अप बॉक्स मात्र रु 1200 प्रति महीना में सर्तहरु लागू होने छन् छिटो बने गई WorldLingo
1: दमोली FM 94.2 समुदाय को आवाज
2: मेसोना डिजिटल प्रस्तुत गर्दछ।

0: ओली एफएम 94.2 समुदाय को आवाज।
1: ए बहिनी, घर त चिटिक्कै बनाएछौ हैन? यति राम्रो फर्नीचर को सामान कहाँबाट ल्यायौ?
2: कहाँबाट ल्याउनु नि दाई, हाम्रै व्यासचार किसान हार्डवेयर को पछाडी पट्टी रहेको आरती काष्ठ उद्योगबाट ल्याएकी नि।
1: हजुर, हामी कहाँ स्टील को दराज, कुर्सी, टेबल, साथै काठ को सोफा, दराज, पलांग, पर्दा, कार्पेट, विवाह को सामान होलसेल तथा खुद्रा मूल्य में बिक्री गरिन्छ। आरती काष्ठ उद्योग,
3: ब्यास 4 मेन रोड, दमौली तनहुँ।
1: प्रोप्राइटर विष्णु कुमार श्रेष्ठ। फोन 98 16 16 13 26, 98 4 63 056 05, 98 19 11 36 27, 65 65 025।

0: कागज के मेछि वा
1: अ झिलकाई
0: के पर्सनल नम्बर ब्लक लै वदि
1: पर्सनल मोबाइल नम्बर मे उनियो टेलिकमर बे अफिसर याइर ब्लक लै र खलखाई
0: अनि बैंगरी
1: बैंगरी
0: अ
1: चढ चाहिँ तलि लल्पर्दि
0: चमलल पर्दि न आफै न मोबाइल नम्बर फेर दिया बदि र ब्लक तयै बिष आफै न बैंक दे बिनी जानकारी पिन परिम दे आफै न बैंक खातै न जानकारी अरुइ न योरी थोनिप दक्या सचेत तल परिम
1: सतर्क तना ठगी तब दक्या जोगिना
2: सिद्धार्थ बैंक र क्याले जनहितरी जारी सन्देश
3: सिद्धार्थ बैंक सम्बन्ध सधैं भरिलाई
4: होइन हो माइली मलाई त ढाकाको टोपी दौरा सुरुवाल

क्यों घास वन में आगो लगो भनी जीव जंतु को नाश वन में आगो लगो भनी वन जंगल खाँच वन में हुनी जीव जंतु ने सारे पीर मं फागुन देखि जेठसम आगो लगने डर आपनो

शानो उदासी को सा जिंदगी रउजाड़ी का सन मेरा मन का रहर हर तिमी संग को बिछोड़ मा टोकरिए को ये मोटो तिम्रो जजर को लियो छाती चरखिए को छ मेरो साथ पाउँदा संसार पाए जाए गर्ने तिमी कति रन्छ होला मेरो यादमा कति रन्छ होला मेरो सम्झनामा कुरे है माया कुरे आउने छु म छिट्टै फर्केर।

आरबीटी महिला 6054-2898 पुरुष 6054-2899 स्वर रामजी खाड सूर्य प्रसाद भट्टराई र पूर्ण कलाबिसी लय होमनाथ कुंवर शब्द उमेश कुंवर विशेष सल्लाहकार सुमधुर स्वर का धनी गुलमेली ध्रुव कुंवर।

0: मौली एफएम 94.2 समुदाय को आवाज।
1: ए बहिनी, घर त चिटिक्कै बनाएछौ हैन? यति राम्रो फर्निचर को सामान कहाँबाट ल्यायौ?
2: कहाँबाट ल्याउनु नि दाई? हाम्रै व्यासचर किसान हार्डवेयर को पछाडि पट्टि रहेको आरती काष्ठ उद्योगबाट ल्याएकी नि।
1: हजुर, हामी कहाँ स्टील को दराज, कुर्सी, टेबल, साथै काठ को सोफा, दराज, पलांग, पर्दा, कार्पेट, विवाह को सामान होलसेल तथा खुद्रा मूल्य में बिक्री गरिन्छ। आरती काष्ठ उद्योग,
3: ब्यास 4 मेन रोड, दमौली तनहुँ।
1: प्रोप्राइटर विष्णु कुमार श्रेष्ठ। फोन 98 16 16 13 26, 98 4 63 056 5, 98 19 11 36 27, 65 65 65।